0: प्रभात
1: हम आकाशवाणी जमशेद पुष्प विभिन्न साहित्य केंद्र से बोल रहे हैं आज दिन रविवार है माह के तिथि तीन तदनुसार 24 मई 2024 अब आरंभ होती है हमारी

श्री श्याम जी बेहद के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री विनय वोंग, जापान के विदेश मंत्री योशिहिदे मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने

0: एक महत्वपूर्ण दृष्टि को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शॉकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में विपक्ष की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी वित्तीय समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर को बढ़ाने को देखते हुए सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तंत्रों की तलाश के लिए चतुर्जीत द्विवेदी का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भारत संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आकर

घोषणा की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभंगी अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नासिक अदालत ने विशेष जांच दल

फोन पर और फिर वहीं से गाने वातावरण हवा महल में झलकी के लिए मैरिज एनिवर्सरी हरि नारायण शर्मा ने लिखा एस एस व्यास का निर्देशन 8:15 पर चित्र लोग 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा 9:30 पर मधुर सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के पंकार कार्यक्रम सुबह 10 बजे छाया गीत के लिए 10:30 पर ढलती जाए रात 11 बजे दुविधा सुनिएगा हर्ष नाटिका सास बहू और हेलो फरमाए

विराह के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साखरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के ससुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा विछावन देख जिसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण शरीर के छोटे भाई मन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछा कर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस शोर से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

आपको एक ऐसा राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राज ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। सतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राज है। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर जो एक वागीकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज्य करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया

इस पर शुद्ध है। यह 29वां मेल करता राग वीर शंकरावर्णम से जन्य है। तो इस पर शंकरावर्णम के अर्थात बिलाल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग सतन कुतूहलम सचलन इस प्रकार है।

ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पास पास के धुन बज रहा हो, लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कथन कुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोर्स में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कथन कुतूहलम सुने श्रेष्ठ गोपालन की आवाज में मुत्तैया भागवतर की एक रचना। यह कृति आदिकाल में है, अनुपलन के बाद अर्थात अंतरा के बाद एक चित्रस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग रतन कुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज में राग रतन कुतूहलम में मुत्तैया भागवतर की एक रचना।

के धाम है त्यागराज स्थित जो है रघुवंश सुधाम बुद्धि जिसकी रचना पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने खुद की, तो उस पर भी छोटा सा झलक मैं दे देती हूँ आपको।

0: सुन रहे थे जल तरंग पर राग कदम कुतुकलम। कलाकार थे अन्यम बच्ची एस गणेशन और एस चंदपाणी। आप तो जानते ही श्रोताओं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है शकुंतला मैथिलमणि।
1: विविध भारती के संग्रहालय के साथ इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपा।

परिवार ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज शीतलू की आशंका व्यक्त की और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

0: के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के अपने उठाया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया के स्थिति सहित महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एडिट बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाते हैं। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दृष्टि को

शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के

घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CETA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन के

सुनने सचिन के साथ प्रदर्शन था। प्रणव प्रमोद को 10.2 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला।

सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के सोना कार्य

I'm trying to read. I don't ask you so much, but you don't be

उन्हें बता चुकी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में फिर से देखता है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

decir que la flor de cerezo, pero un doctor se pasa a la cerezo.

0: सच ये है कि जहाँ आराम शुरू होता है वहाँ तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर रहते हैं।
1: हम उसको है ये

हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद पूरी दुनिया नहीं जानती। तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियाँ इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफल पूरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उस पर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो कभी पेड़ नहीं रह सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी छोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

जनजाति सांस्कृतिक समागम होगा। इस आयोजन से कुछ राजनीतिक दल का एमएलए एमपी लोग नागपुर क्या उन लोग आज जो आदिवासी भी जिस जगह तक वो लाके एक आजाद होने के बाद ये आदिवासी का अलग कॉलम था, उन्हीं के साथ में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था उसको समाप्त। लेकिन आज

चाहे फिर हम मुद्रा की हम बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, और उससे अब तक महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके ताकि वो वर्क प्लेस पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करके काम कर सके, आज उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं।

कर्ता होना चाहिए। देश की हम देश को देश हित में देश देश के विकास के चलने से देखें, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखें। अब जब तक ये मिडिल ईस्ट का जो गतिरोध नहीं समाप्त होता है तब तो है, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश से गैस आराम से मिल रही है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं,

तक थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो पर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत

काफी हुआ स्थान कर

to the show of our attention, so that we are going to the test. I

Please make the commitment. Please turn to me with the city.

ब्रीफिंग क्लास से लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड से ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफ़ी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते थे ना हेलमेट, तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में जाकर मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़की को दिखाना चाहते हो राइट। हाँ, तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, साइड में जरा इंटीरियर आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ। कूल बनिए, कूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं।

मुस्लिम सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल सिद्ध कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर

1947 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार वो मजरू साहब से बेहद मुतासर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल

विचारधारा के समर्थक मजरूर सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजनू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजनू साहब को प्रदान

दोस्तों, मधु सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, तेजदी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, पूजा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश चौहान से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मधु ने अपने बोल फिरो।

के संगीत ने भी मजरूह के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया।

के गंभीर हमले से मजनू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा जल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर

कार्यकर्ता रमेश गोखले और डीजे राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

can live as

kan ayrıca seçimler için en son 3 kutular

देश दर्शन का जन्म है, ताकि आप बढ़ते हैं देश दर्शन दर्शन के प्रतीक है। ये गीत फिल्म का नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी।

symptoms can't

पंडली का भजन सुनवा दीजिएगा।

Mari.

0: नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार संतोष कुमार बोल रहे हैं
0: जी। कॉलेज रोड घाट चिल्ला

0: बहुत बधाई हो चंपा को आपके सेंचुरी मारने
1: फोन कॉल
0: बहुत बधाई हो। बताइए इस खुशी में आपको कौन सा बड़ा

0: उज्जैन का मौसम कैसा है
1: जी? बताओ दीदी आपको, उज्जैन में अभी मतलब पिछले हफ्ते तो काफी गर्मी थी, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब दो तीन दिन से मतलब गर्मी कम पड़ी है और मतलब थोड़ा कंट्रोल हुआ है यहाँ पे।
0: अच्छा
1: जी हाँ, और उसके साथ में मैं आपको बताऊँ, मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ मैं।

0: किए जाते हैं तो उनको भी सुनते हैं और जो मतलब खेतों के बारे में फसलों के बारे में जो जानकारी हमें बताते हैं उनसे हमें काफी लाभ मिलता है।
1: रेडियो सुनते हमारी फसलों को और
0: मैं आपको बताऊं दीदी, जैसे कि आपको हमारा एक ग्रुप बना हेलो ग्रुप तो होता है जिसमें से कुछ राज्य के श्रोता बार बार फोन लगाते हैं और हमको अपडेट भी करते रहते हैं कार्यक्रम के बारे में और तो मतलब जैसे कि हमें काफी जानकारी मिलती है कि कौन से राज्य में भी कौन से कार्यक्रम रिकॉर्डेड है या लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हमें मोबाइल एप से कार्यक्रम सुनने को भी मिल जाता है।

और शिक्षण का जो ग्रंथों के ना

0: carne Aram.
1: Y namaskar kon karne de se.
0: Par jab jo pasat ka jeri kumar par bol raha hu. ठीक है मैडम, अभी तो धूप का टाइम है, घरे में बैठे रहता हूँ, गाना सुनते रहता हूँ।
1: बहुत बढ़िया। हाँ। और एहतियात बरतना भी जरूरी है ना, क्योंकि मौसम के साथ हम किसी चीज का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते।
0: चल फिर तो नहीं सकता ना मैडम, तो बगल में एक फर्नीचर का दुकान है, वहीं बैठ के अपना गाना सुनते रहते हैं और अपना टाइम भी बीत रहा।
1: हाँ बिल्कुल,

फिल्म है किशोर कुमार आशा भोसले का गाया हुआ है और एस डी बर्मन और मधु सुल्तानपुरी इसका गीतकार संगीतकार है मैडम। तो गाने की बोल है छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।

0: हमारे नियमित श्रोता श्रम लाल जगत
1: आप मैडम सुना दीजिए आकृतियों का दुश्मन न कर उसने जो काम किया है उम्र भर का हमें इनाम दिया
0: है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा

0: मैडम जी नमस्कार एम सिंह बोल रहा हूँ। जी हाँ जी एम सिंह जी कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो मैडम?
1: आप लोगों की दुआ है और पूरा आकाशवाणी परिवार अच्छा है। प्रेम सिंह साहब
0: हाँ मैडम
1: जी आप हैं।
0: गर्मी एकदम खेतपुर वाली गर्मी तो फिलहाल बीच में चली थी, अब फिर से शुरू हुआ है, लेकिन शाम में बादल आ जाने के कारण, बारिश हो जाने के कारण थोड़ा सा राहत होता है। ये कब तक चलेगा आंख में चोली से तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है।
1: ऊपर वाले की मेहरबानी से

ऐसे मुख्य नंबर होगा

spoke about those things.

是一个人的就是想那些分享的事情。

या जो किराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत किसान या बैंक शाखा में जाएं।

है कार्यक्रम में सुनी जा इस पर तो अपने रेडियो सेट को सुधा कर लाइए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुनी जा सफर जहाँ होती है हमारी इबारतें और आपकी बातें थोड़ी थोड़ी सी तलखी कुछ कुछ थोड़ा सकार और बेशक हम और आप मिलकर कह सकते हैं सुनी जा सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों एक मौसम देखा भी होता है इसी के बाद हमें इबारत मिलती है तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनको हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है कि इसी शायद सही सपनों में मिले थे। ये दुनिया जब जब चमकती है दिल से एक आवाज आती है कि ये तो सच्ची है और सच्ची ने वो बात कहा। कायनात को देखो तो दिल की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। कोई भी ऐसे राज़ दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए। यही से बहाने से सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर घोड़ा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों एक मौसम दिल का जो होता है जो जरूरी है कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार

说到这种三线和这后期的一些这些发展非常的重要，但是当你发起了这个男孩，只要你发起了，突然你会得到他，接下来你会得到他，都是三线性的人家发现，你就会发现，他的发展你都很清楚，如果发现这里，他现在是这样，他是不怎么样，你就是不怎么样，说到那个后期的男孩，接下来你可以理解。那就是咱不是为这个原因，俺们这个担心，那些事他在一定大数目的，他们也说到的这些儿子不学吧，马上呢，他就是在后头进行这种子吧，这种子吧，你看，你们看，现在这个人不学吧，我再还跟他们俩说，其实是，也是很多的吧，你看，根本根本阿不得了，你看，而我们现在把孩子们就是全部的阿娃子，你不阿些看到不难的，你看，你看他真的是。खूब सूटी नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज नहीं बल्कि दिल की वाली वालों के मन में होती है। इससे तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठोर में भी सुंदर होती है। यही कारण है कि उदास मौसम के खिले हुए मौसम में अच्छी दिन को निभाती है। आज की इबारत में ध्यान कर जाओगे कोई बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती है कि दिल मौसम आशिकाना दुनिया आवाज तस्वीर शायद कायनात तमन्ना कुदरत प्यार राज मुश्किल मुमकिन खफा बहाना घर दीवाना बादल बेकरार अच्छा चलते और कुछ गीतों की छुट्टी भी उन्होंने दी है। एक और श्रोता लेते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम। आइए चलते हैं पूर्व भारती के सुनने सफर में पिछले मन के कुछ ठंडे गीतों से इस दो किसी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारे लिए भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है एक बजे का जो हमसे कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती है आपकी जो पंक्तियाँ प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहाँ हर मौसम इतनी दास्तान सुनाता है। आंखों में से ये सपने दुनिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है। बादलों की तरह बेकरार करके जाने और अच्छा तो चलते हैं तब वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हो लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर

पोस्ट अच्छी से लागू किया जाएगा और तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, न्यायालय और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू निषेध संबंधी सूचना पत्र लगाए जाएंगे। कोटपा 2003 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध कानून के तहत

CBCP or C5 plus parameters.

आकाशवाणी जनपद पर आप जगह भर के जन है। आइए अब आपको ये चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई के मित्र जहाँ से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर का आश्चर्य।

नहीं चाहे, अगर आप बता दें तो क्या बात है, हमारी स्वतंत्रता में क्या बात है। आपने खूबसूरती से पुराने सदाभार गीतों की पंक्तियाँ उनके पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बार बार हो गया। ये सिर्फ एक फोटोग्राफ नहीं बल्कि मेरे सिनेमा के पहले दौर को जनरा का एक म्यूजिकल सफरनामा आपके खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाभार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं। और जो बहुत सारे गीत तो बात उन्होंने लिखी है उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते हैं, जहाँ इन्होंने गीत दिए मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल की जगह चोट खाई पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर नहीं ले ली है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली, जब कचरा आज मिली था वो भी सेकेंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस दिनों लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसे ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसकी खरीद से कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी यानी पहले गीत की उन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। ये आप जहाँ तक की बात है वो साइकिल पर सवारी प्रकृति को महसूस रखती है, तो अक्सर जो हम साइकिल चलाते हैं इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं, सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहाँ प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का खेलना करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घूमती जाती है, जिनका सपने आना

सारी शांति छोड़ देते हैं। कुछ दिन में सुनते हैं, सुनते ही पुरानी यादें उसी के सामने आ जाती हैं। ऐसे ही सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो। कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है, और कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं हमें कुछ बार सुनने का मन करता है। हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो है आज के कार्यक्रम से

को लिखना बाकी है कि हमने कुछ हमारी जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ श्रोताओं ने फिल्म कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि गाड़ी की चाल को सीधे रखे हूँ पर दिल लहराते ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नजारों को देखकर दिल का मौसम भी आशाकर्मक हो गया। हम सबको हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हम उनसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानी बने सुनाई नहीं देती तो वो उसे किसी गहराइयों से महसूस करने पर भी समझा जा सकता है और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है? हम बताते और किस चीज़ का पेड़ है। एक उन्होंने जिनका अभी मैंने जिनकी बात करी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मुझे तो सपने दिल रहा कि कल दिन दर्शन के लिए जो बात पूछती हूँ देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और से कहती जिंदगी का सफर है कि ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन जिनका सफर तो सभी जान लेते हैं सभी समझ लेते हैं। एक और से कहते हैं कि नरेंद्र जी आज की सुनिए सफर में सभी फिल्म साथियों के साथ पुष्प माला पहनकर स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान इससे दूरी पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुश आराम मनाएं और शुभकामनाएं। एक और चीजें हैं कि बोरिंग के सच में दिल का मौसम से हवा बना हुआ है, हालांकि गर्मी का शहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है।

0: कोशिश करी, कोई ना कोई मीट तो समझ में आ जाएगा।
1: हमारे बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइन नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया।

के लिए भी दिलीप कुमार पर बनवाया गया उसका हरिभंग देखना थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उसी

हमें लगती है। काश के पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ सीखते, हमसे कुछ जानते। खुदा अपनी कितनी अंदर कितनी राज करने के लिए आज कहीं जितना सोच रही है इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल ये दीवानापन भी वो करा दिए और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है आपकी सुगमा सुंदर दिखावट देकर मौसम की छत दिल भी आ चुकाना बन गया है। कुदरत का प्यार जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यदि आज नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर कितना का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं ये मौसम रंगीत माँ और जो कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं भैया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिन का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिन भी घूम उठेगा और कहेगा लहरा कर सब दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में सुनाया गया है। खैर पैराग्राफ को पढ़कर ये पैर से रखने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं अच्छा तो हम चलते हैं और दिन का मौसम जैसे गीत आज की बारिश में शामिल हो सकते हैं भी। अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं आपके बीच।

ऐतिहासिक सिनेमा लग गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चले और ऊँट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल है जो बात पूछते थे और मेरी इबारत के बेस्ट दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमले में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखती हूँ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और रोज मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की बार बहुत सुंदर है, खूबसूरत गाने की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं देंगी, सुनने का भी मतलब लेंगे। अच्छी लगती है, आप लिखे भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो सपने में मिलेंगी, तस्वीरों की बात करेंगे, काश का ना दिन लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज ऋतु दूरिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख सीने की तमन्ना उठती है, राजदल को पाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होकर सीवाना होकर बरसेगा और बहुत लंबी

पर कार्यक्रम का ये गीता सुंदर है जो खुद रख करने से किशोर कुमार की आवाज में ही मनाली में और राजेश खन्ना पर बनाया गया ये गीत था। मेरी श्रद्धांजलि के बोल के राहुल देव बर्मन की तरफ से एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंदमंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफल गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में मेरी साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई, सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल में चलाऊँ चैन ही नहीं आता, और सेवन वृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। यहाँ टाइम पास के लिए जहाँ तक बात हो तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे भी मौसम तो कुछ लगा नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है, सुनीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रही है और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, खुशनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं साकीना फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है, दिल्ली में पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरी

कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने

Sì, ma certo che il libro di Polonia è più classico con un momento di debatto per il Valle. E come ho detto, tra le sue musiche, ho detto per essere come di te per Oplade, ora pure mi ricordo a te che lo dico per il Valle, perché lì tu usi per la visione e cose per le sue musiche. बिल्कुल आपने जैसा पूछा मौसम तो होते ही हैं प्यारे हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी हर दिन की प्रतीक्षा रहती है हमें क्योंकि हमारे लखनऊ में मिलिश सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और छोटा लिखते हैं राजस्थान में ऊँट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले कीलों के बीच ऊँट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊँट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जब ऊँट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार उनके मौसम कितने प्यारे नहीं लगते। हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ में हाथ डाले दूर तक चलने में

स्थान पर नहीं हुई, लेकिन अभी हाल में गुजरात के गीर में हमने ऊंट की सवारी की। थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और स्वतंत्र फिल्म फिल्म गाइड का गीत मेरे लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले में सुनवाया गया ये गीत है। एक और स्वतंत्र लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम करता था और हम उस पर बैठ कर घर के खेतों में और वहाँ से घर आते थे। एक और स्वतंत्र लिखते हैं कि हाँ मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊँ। एक और स्वतंत्र लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ उदयपुर जैसलमेर और पुष्कर भी हुआ था

अपने हमेशा संपर्क जोन के बाहर मिलते हैं।

कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम करते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियाँ इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की

सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उस पर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी छोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

मंत्री के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के हल्का विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, रुवांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में

जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक

करते हैं, विश्वास है। उन्होंने कहा कि जब हम बीच व्यापार समझौते को विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकारिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत

का सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री

गरीब मजदूर की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक की। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटे भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कल का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। 4 मिनट तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथपुर में दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 गांवों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर स्वयं इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन को रवाना किया। रामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाइयों के लिए अत्यंत संरक्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्स्यम नेपाली भाषियों को लगातार

24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आस पास खड़े एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया। खदान हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 243 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांति प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर कहा कि संदिग्ध का शीर्षक इतिहास था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेट्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और चेलोफ्रिड्स

queria

के संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राजमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा, साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश,

समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के सल्ता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में

Mutta se on

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक पट्टी और सामुदायिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लोगों को जागरूक किया। और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रहे हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा

life

सोचने से कहते हैं हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहिए। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडी शरबत की ताजगी है और हंसी खुशी और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके साथ आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मन चाहिए गीत आज

कभी कभार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अपने सुनाने का मंगेशकर महामंडल के आवर्जन आनंद बच्ची की बोल थे था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और एक गीत को सुना था महिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान यशपाल धीमान विनोद और राजीव धीमान मनीष जी रावर का नाम से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया और इस गीत को सुना चाहते थे जिला सनत नगर पालन से नम कुमार अडवंत उर्मिला अडवंत नीलेश अडवंत मयूरी अडवंत कृपेश अडवंत और संगीता अडवंत।

मुझे बहुत पसंद थी। इसी गीत को सुना था सिकंदर अली खान बदरुद्दीन ने शिकम से दी बड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इसकी फरमाइश की, जिला अमरावती से श्रीनगर से यही चंडी हादली सीमा हादली गंज गंदवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम कविता अनन्या खुश रिंकू टिंकू रीमा ऐश्वर्या श्री

करता जाए जी पर संगीत से बदली ली जाएंगी कि गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और ये हमारे श्रोता हैं कुल्हारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आर्या, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीन आर्या।

सुन, खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। कोई चाहता है इसे आंखों में आंख लू, शब्दों में बांध लू, मन में समेट लू, कल्पना से संवार दू, कर लू वंदन।

0: संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
1: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरे दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरी में ताल झुंझित होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुकुड़ती है और चलती है तो
0: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा।
1: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
0: अरे भाई गजबान भी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
1: अच्छा भाई, तो आप उससे की बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर होता तो नहीं?
0: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आप ये तो कहती है डॉक्टर साहब, एक नया रूटीन है, सुनिए क्या करूँ, तुम्हारी दोस्त है, झेल ना पाता इसे। लिखती है कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कौन।
1: अच्छा और क्या कहती है?
0: कहती है खिलती कलियां झूलती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में ले जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
1: और आप कहिए तो प्रपोज कर लो।
0: नहीं ना, पंचमी ओस में नहाई पावन कवि की तरह, जिसके पंखों में न जाने न जाने कितने सपने मैं इंतजार करूंगा।
1: समझिए भाई साहब, मौका देकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आ गए।
1: अरे भैया आप घर में सब ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
0: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
1: क्या वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हो, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
0: यही कि रात की ट्रेन से हम लोग का रिजर्वेशन।
1: रिजर्वेशन?
0: हाँ, हमें आज ही वापस जाना
1: है। लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
0: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊँगा।
1: लेकिन भैया आप जानते हैं सब क्या हो रहा है,
0: और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
1: तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
0: मजाक नहीं सुनो, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
1: मुझसे पूछा तो नहीं, सब कुछ कह दिया।
0: परेशान मत, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे हाजरी कर रही हूँ, घराना है लड़का, मैकेनिकल इंजीनियर, 2 बार बाहर भी हुआ है। ठीक है, पर देख वही तक पूछने के बाद तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं, बड़े बड़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
1: हाँ, कभी तो आप घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया,

छोड़ोगे और लड़के को बहन मंजू वो तो

0: को। कमरे से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनिए
1: विद्या जी, चलिए भैया जी आ गए।

0: आप मुझे ठीक कर बैठे। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? जैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है। पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है। इसे करो मंजू, इसे आईएस बनना है, आईएस।

0: का सारा काम पड़ा है, इतनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
1: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। ये क्या रही है भाभी?
0: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। तो ये भी भाभी है, तो ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी। लो लो चाय पियो, लो लो।

Porque recebi.

0: बाबूजी,
1: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: पहले तो दौरा पड़ा है बाबूजी, आंखें बोल रही हैं।
1: क्या कह रही
0: हैं? कभी हंसती हैं तो कभी रोती हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची को चाबी पकड़ रही हैं।
1: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे घर से क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे। भाभी राहुल देखिए तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठे, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना, घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।

Equidade

super sedih. Tapi saya juga memikir, aku sendiri kata, saya cuba tinggalkan. मेरे खाना जाने से ऐसे नहीं है क्योंकि बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी, हर इम्तिहान में टॉप करती थी। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हूँ। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी? हाँ मैडम, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। दस दिनों तक ना सोए और न ही किसी से बात की। इसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।

बहुत तारीफ करती हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करती हैं, और डॉक्टर क्या करती हैं, उम्मीद दिलाती रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगी। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह दिया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं, अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तो लेकर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबूजी आ गए हैं।

कभी भी चार पांच गाड़ियां ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति।

0: chute que j'ai pas de bol. Bobby, tout gagné, Bobby. Et quand Michel Boula s'y lave, tout ce qu'on dit qu'on l'a vu. Et quand on a mis pas bien, il dit ce matin, il dit que c'est un langage. Il m'a fait, Bobby l'a vu. Enfin, il a dit qu'on est là. Bobby, tu as allé vous y avoir?
1: Tu as votre rôle ici. Mahasi Wayne itu berapa? Ah, asal dari dapat tidak sih? Khususnya saya pun nak kalah di kota itu apa sih? Ah, untuk injection ini lari sih, perlu perlu injection. Malah ayat kesudahan kami tak lagi. इस बात की सजा दे रहा है मुझे
0: क्या होगा बाबू जी
1: क्या कई साल खुदे फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है क्या सच आप कह रहे हो
0: मैं कल हॉस्पिटल में शिफ्ट करता हूँ
1: राजेश बेटा कल सुबह सबसे पहले फोन करके बिना सैंपल करने की सूचना दे देना
0: लेकिन बाबू जी भाभी के मायके वाले स्कूल से आ रहे हैं चल ही दिए होंगे भाभी जी प्रिया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया
1: उस समय तो ठीक था बेटा डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकते हैं और बीमारी बढ़ भी सकती है इसमें रिस्क है हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबू जी
1: बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे
0: ठीक कह रहे हो आप उसके लिए एक क्या कई सुनी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है
1: बच्चू बच्चू
0: जो खराब की बेटी के साथ बीच में भी होता तो
1: चुप हो जाओ चुप हो जाओ जो उसमें आता है पर बेटी है
0: मैं कह रही हूँ इस रब से हम नहीं कर सकती मासूम लड़की है उम्र मुझे मुझसे छोटी खुशियाँ उसका रोना उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी

0: अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
1: हाँ बुलाता हूँ।

0: teda sa či sa tie suchári?
1: Itmenan rahe main dekh leta hu. Are bhai isko to bukhar hai. Aisa karta hu main se ek injection filhal laga deta hu. Aur ye dawai aap bazaar se mangwa lijiyega. 4-4 ghante par dete rahiyega. सुबह तक बुखार उतर जाएगा
0: ठीक है
1: और घबराने की कोई बात नहीं है
0: ठीक है जा बेटा दवाई ले आ
2: थैंक यू डॉक्टर आइए मैं आपको दरवाजे पर छोड़ देता हूँ सो गई हूँ आप इस कमरे में चलिए डैडी यहाँ बैठ जाएंगे
0: ठीक है
2: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है आइए
0: हाँ हाँ बोलो बेटा क्या बात है
2: मम्मी हमें धोखा दिया गया है
0: धोखा कैसा धोखा
2: हाँ मम्मी धोखा वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा अब हॉस्पिटल में फिर ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी नहीं तो हम तो भूखे में रहते
0: क्या होगा राकेश मेरी माँ से बच्ची छोड़
2: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा मैंने और डैडी ने तय कर लिया कि सुमी अब वहाँ नहीं जाएगी रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा तो जान पर भी हमला करता है अपनी सुमी को नहीं खोना चाहते मम्मी एक बात सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे तुम्हें माफ़ी तय करेगी और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे

0: रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे से पूछा ना।
1: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुनी?

0: लेकर संबंधित इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के
1: अब तक के समाचारों के साथ मैं

করেছেন।

छोड़ करते रहते हैं। तो इसका मैं जो नाटक मेरे विद्या दिन समय एक सफर जमोर

habitually

0: अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा वो बच्ची जो बड़ी हो गई है वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा बहुत अच्छा लिखा हुआ तो वो पोस्टर हमें काबिल हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई है अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी है, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर,
0: शुक्रिया।

से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। इसलिए अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लू जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको आपको ORS आपको अर्ली टाइम में किया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर

Tenemos que hacer la cena. Ah, pues por aquí no, así que.

इससे जूता नाम है शायद। ये दिन उनको ढूंढ कर लाता हुआ महसूस होता है। उनकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। ये फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी है, खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। मुझको महबूब है आपकी हर अदा, तू मेरा रंग है, तू मेरा रूप है, मेरी छांव है तू, मेरी धूप है तू। जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, दिल कहता है, दिल कहता है, उनको भी मैं याद आता हूँ।

मेरी जादू से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखों में। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी हैं तेरी मेरी कहानी, सच कहूँ इश्क हो जाएगा मेरी दास्तान इश्क से, रात भर जागा करूँगी इस कहानी के लिए।

जाए छाया दी। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो भरता मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में चलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिस्र की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिस्र की शाम। न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिस्र की शाम।

एकदम तुम्हारी याद आती है जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले एक कसक एक तीस एक सूनापन एक अधूरी सी आहट दर्द खामोश रहा टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा टूटती आवाज रही मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

से सुबह तक जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझ में और मुझ में मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, ये और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा, छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी, उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिखरा साजन, झूठा दोस्त, हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना। आपसे मोहब्बत थी

लिखते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती।

आज जन मन गीतकार मधुर सिद्धांतों की याद कर रहे हैं और जन मन संगीतकार राजेश रोशन का जन्म दिन है। तो आज के कार्यक्रम में कुछ गाने इन दो महान हस्तियों के नाम, गीतकार मधुर सिद्धांतों के नाम और संगीतकार राजेश रोशन का संगीत प्रतिक्रिया। ये इतना मधुर सिद्धांतों की है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़।

Once you've got a very good

Thank you.

0: के रोमांच कहां को देखे हाल के लेकर मन की बात के संवाद
1: आसमान में सिर उठा कर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है,

जैसे हम अपने देश के लिए काम करें और कैसे सब हम लोग को जो

हजार 81 एक्साइट टाइम 65 आर न्यूज अंडरस्कोर राशि और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज राशि इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल केंद्र सरकार ने नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा

स्टेडियम में आयोजित हो

थल सेना ने भेज कर

जीतने का मन बना लिया था। इसकी रणनीति तैयार थी। तय किया गया कि सेना कई कंपनियों में बढ़कर अलग अलग दिशा के एक साथ दुश्मन पर धावा करेगी। 28 जून को रात 8:30 बजे का समय इस हमले के लिए तय किया गया। बटालियन में अलग अलग कंपनी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। मेजर पद्मपाणि आचार्य को अल्फा कंपनी की कमान सौंपी गई, जो नोल को जीतने के लिए निकल चले। इस मुश्किल जीत को हासिल करते हुए मेजर आचार्य कैप्टन विलियम समेत कई सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। वहीं घातक कमांडो कंपनी की कमान सौंपी गई कैप्टन नीके जाकू केंगुट्टे को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 25 साल के कैप्टन केंगुट्टे उस समय सेना के जूनियर्स में थे। उन्हें सेना में आए हुए तकरीबन 6 मार्की हुए थे। फिर उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? क्योंकि घातक पलटन की कमान सबसे बहादुर और तंदुरुस्त सैनिकों को ही सौंपी जाती है। घातक पलटन आम नहीं है, बल्कि उन्हें सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना होता है। कैप्टन मेकिशा को कहने के लिए बड़े सम्मान की बात थी कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया कि अब जीत किसी भी कीमत पर हासिल करना ही है।

तोड़ेगा था। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन

दुश्मन के पंजे से सुरक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। बस इसी जज्बे के साथ कैप्टन निकिता को कैंगू से अपने पलटन के साथ निकल

अपनी 62% के साथ पहले इसी पोस्ट को कब्जे मिले ताकि बाकी कंपनियां अपना काम कर सकें।

कब्जे में करने के लिए अपने पचन के साथ निकल चले। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि यहाँ सामने से जाना नामुमकिन था और दुश्मन सेना तक पहुँचने के लिए पीछे से एक खतरनाक पहाड़ी चढ़ाई चढ़ना था। योजना के अनुसार 28 जून की रात सेकंड राजपुताना राइफल्स ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। पीछे से दुश्मन सेना को घेरने के लिए अपने पलटन के साथ

तीन दिन कोर्स पर जिसमें सेना के सात बंकर मौजूद थे जिन्हें भारतीय सेना को नेस्तनाबूद करना था। इसके लिए चट्टान तक पहुंचना बेहद जरूरी था। कैप्टन सिंगू से अपनी पलटन के साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्हें बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़नी थी।

बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू सेंगू

सीखने शुरू कर दिए। इसी बीच एक फूट की ग्रेनेड का छर्रा टीवी कैप्टन निखिल लाकू केंदुलकर के पेट में जा घुसा। वो घायल हो गए। दर्द ने उन्हें कुछ पल को रुकने पर मजबूर किया और उन्हें ये आभास हुआ कि उनकी पलटन के कई जवान अपनी और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं बल्कि अपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर पड़े।

सोचिए कि ठंड से सुहती रात में घायल लहूलुहान के अटल नीचे जाकर कैंगू से अपनी पलटन को हिम्मत न हारने के लिए कोई भाषण नहीं देते, बल्कि वो अपनी हिम्मत उन सभी में प्रवाहित करते हैं। पेट के घाव और रिश्ते खून की परवाह न करते हुए वो वापस खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और हाथ में रॉकेट लॉन्चर का भार लिए। हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि मात्र 25 वर्ष के इस युवा के हौसले और साहस के आगे दुश्मन ही बहुत चक्का रह गया होगा। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे ने ऊपर पहुँचते ही दुश्मन सेना के पहले बंकर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। उनका ये हौसला उनकी पलटन में जोश भरने के लिए पर्याप्त था। सभी एक बार फिर आगे बढ़ चले। अभी दुश्मन सेना के 6 और बंकर मौजूद थे। खतरा और मुश्किल भी एक पायदान ऊपर थी। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे अपने घातक पलटन के साथ दुश्मन सेना के बाकी बंकरों की ओर बढ़ चले। इस बार सिर्फ कड़ी चढ़ाई ही सामने नहीं थी, बल्कि उस पर जमी बर्फ इस चढ़ाई को और मुश्किल बना रही थी। कैप्टन कैंगुरसे ने देखा कि उनका बूट चढ़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने -10 डिग्री की उस ठंडी रात में अपना बूट उतार दिया और नंगे पैर चढ़ाई चढ़ने लगे। मानो लक्ष्य पाने का एक जुनून उन पर सवार था। सुन्न होते पैर, पेट का शक, ऊपर से आती मशीन गन की फायरिंग, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का हमला, कुछ भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रहा था। वो बस चढ़ते जा रहे थे। ये हौसला, ये साहस और खुद पर इतना भरोसा एक बेहतरीन नेतृत्व की ही पहचान हो सकती है। जब सामने हो तो पूरी पलटन का दिल उस जोश के वशीभूत हो जाता है।

नेशनल सेना के दो सिपाही उनकी ओर लग गए, लेकिन कैप्टन के गुस्से से पार पाना किसी के बस में नहीं था। उन्होंने दुश्मन सेना के उन दोनों सिपाहियों को पलक झपकते ही हाथापाई करके अपने कमांडो खंजर से ढेर कर दिया। आगे उन्होंने दो और दुश्मन सिपाहियों को अपनी राइफल से मार गिराया। दुश्मन सेना का दूसरा बंकर भी नेस्तनाबूद किया, लेकिन अब भी दुश्मनों के पांच बंकर बाकी थे और उन्होंने दुगनी तेजी से हमला बोल दिया। सामने से आती धुआंधार गोलियों की बौछार को

के साहस और जोश के आगे दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए। जो वहां रुके उनके प्राण उनके शरीर का साथ न दे सके।

परिणाम काफी परिणाम था कि बीच में सेना की मुख्य फोर्स भारतीय सेना के कब्जे में आ गई और सेकंड राजपुताना राइफल्स ने लोन हिल में भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस जीत में कारगिल विजय ने बड़ी भूमिका निभाई। कैप्टन ने के डाकू कैंगोसी ने जो आखिरी पत्र अपने पिता को लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि पापा हो सकता है कि मैं वापस घर ना लौटूं और फिर से अपने परिवार का हिस्सा न बन पाऊं,

weekend at school,

सुन रहे थे छलिया फिल्म के गाने की धुन। कलाकार थे सुरेश यादव, सैक्सोफोन वादक। आइए सुनते हैं छलिया फिल्म का गाना मुकेश की आवाज।

के गाने की धुन आप सुन रहे थे। कलाकार थे सुरेश यादव। अब इस फिल्म का गाना सुनिए, गाना क्या झलक चाहिए। फिल्म का जवाब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज।

फिल्म का गाना सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आज के कलाकार थे सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव

0: आपको जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी और आप ये सब जज कर क्यों बैठी हैं? तो शादी के साथ मेरा बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: बस बस रहने दो,
0: अगर तुम सवेरे मुझे बता देती तो मैं

0: की तरह कान पकड़कर ऊंट में बैठक लगा लो। अरे लगा ही लेता हूँ, टिक्कम एक, दुक्कम दो, टिक्कम तीन।
1: अरे
0: तो बोलो माफ किया, ये हुई ना बात। मेरे पास में बराबर में आके बैठो कि हम पास का प्रोग्राम तय करें।
1: अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा।
0: अरे फिर तुम वहाँ मुद्दे पर क्यों बैठी हो, यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
1: मैं कहा आपके बराबर कैसे बैठ सकती
0: हूँ, मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती।
1: अभी कल ही मैंने गुरु जी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का व्यक्ति का स्थान पति से मिश्र होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है।
0: कोई इसी को क्या सुन रहा हूँ, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। देखो सीमा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम

0: पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं। अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है।
1: अब तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
0: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी बुड्ढी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
1: अगर तुम मोदी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
0: अच्छा, और अगर मैं भी सोफे पर बैठ गया तो
1: मैं पीढ़ी पर बैठ जाऊंगी।
0: और अगर मैं भी पीढ़ी पर बैठ गया तो
1: मैं

0: करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर नाइट को पिक्चर देखने के लिए।
1: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही
0: हूँ। कुछ नया ही करती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने के बजाय घर में कुछ बना
0: जाए। ये भी अच्छा आइडिया, तो क्या खास बनाने की सोच रही हो?
1: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
0: ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।

0: माँ सोचा ये भूल रही है कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
1: पता है?
0: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने जा रहा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी के सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
0: तुम घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेते।
1: मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है और इस बार शादी की सालगिरह पर तो मैं तो अपने भैया भाभी को बुलाया था उसकी क्यों नहीं जाती क्योंकि तुम्हें मेरे लिए टूटी आंगली धोते
0: जो बिल्कुल ठीक। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों के बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ।
1: जरा मैं भी सुनो कि मेरी कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो?
0: देखो मैं अपने ससुर के बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास के बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन के बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
1: ठीक है अपनी बात सुनकर चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान रहा है वो ला कर दो और कान खोल कर सुन लो। अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरु जी के प्रवचन में सुनी बातों को भूल जाऊंगी।
0: ठीक है लो थैला और पैसे लो।
1: ये लो थैला, पास पैसे मेरे पास है।
0: क्यों क्यों भाई पैसे क्यों नहीं? अरे अभी परसों तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे।
1: हाँ हाँ बोल तो ऐसे रहो जैसे 3,000 ने 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वो 3,000 रुपए तो हमारी किसी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए।
0: चल तुमने किसी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए। अरे सीमा कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ कि पैसे देख कर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो किसी आईएएस की नहीं।
1: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे तो तुम से शादी कर।
0: अरे तो मैं कहती हूँ कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था?
1: अरे एक चीज भाई बोलो तब तो रोज रात सुबह शाम मुझे शादी करने के मेरे पापा जी चौकर पर नाराज रहा करते थे।
0: छू सब नहीं छू बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौकर उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत फूटी थी

ultimamente, ah,

0: फिर उसके बाद मूवी का प्लान है
1: क्या? उन्होंने एकदम से प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी।
0: क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया?
1: क्या बताऊं, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था। मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, हमें क्या करें?
0: क्या इसी बात की मेरी भैया से झगड़ पड़ी? मेरी सीमा बहन, और वैसे भी आज कल की दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई बहन के तरह है ना।
1: मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उसे झगड़ कर बैठी। भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़ कर माफी मांग लूँ।
0: सीमा बहन, तो आपको वाकई आपसी बातों का पछतावा हो रहा है?
1: मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहा,
2: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है,
1: झगड़ा भी ना चुके हैं।
2: अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
1: तो ये तो तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरे, तुम कितने अच्छे हो।
2: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं, और अब जल्दी करो।
1: अरे चलो, तुम भी चलो ना।

की मैरिज एनिवर्सरी। इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया एच.एस. व्यास ने। आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भूमि है।

अगर आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में जावेद अख्तर के बोल के शंकर एहसान गाय का संगीत था। पितृलोक कार्यक्रम के बाद ही जाने छोटे से अंतराल के बाद

सुनो निगम और संगीत मोहन की आवाजों में कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम। शान उदित नारायण शेयर घोषाल सुमित चौहान और साथियों की आवाजें जावेद अख्तर के बोल शंकर शानदार का संगीत।

विचारें शेयर विशाल के लिए भी तोहन और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर की वो भी विशाल चेतन का संगीत था।

के साथ ही आज का फिट रहो।

सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में खलगा विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को समय दिया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हत्तालु नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे।

0: कितना व्यक्ति देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संघर्ष को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विभिन्न माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों

0: तक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी जॉनसन के विदेश मंत्री सुश्री मुखर्जी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने हल्दा विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ सुरमी को बड़े अंतर से हराया। जरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हल्दा विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जिन्हें 40,345 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत रद्द हो गई है। इस सीट के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। की रिपोर्ट के साथ अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट।
1: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत

सीबीएसई को स्वचालित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में

विभाग की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बात की थी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में

Club und Charles Hazard und Neva. परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में एक सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगा।

पर हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

Elisabeth, elle est un autre pas.

0: सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वही मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में है।
1: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के असम कोड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उर्दुदबेक खालिमबेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है।

0: के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलका विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर शामिल किया। देश के मध्य और उच्चों के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सीमा निर्भर करें प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो से सीमा।

उनका गाना सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजनू सुल्तानपुरी के बोल से ओपी मेयर का संदेश था। दोस्तों आज गाने मैंने गीत का मजनू सुल्तानपुरी की याद का दिन है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ लता मंगेशकर की आवाज सचिन देवर्मन का संगीत फिल्म 10 दिसंबर

0: तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा
1: देखो भांति से पूछते हैं कुछ मोल लगे
0: तेरा जवाब।

Nu vedeți, Marti, super, dar

हेमंत कुमार की आवाज में मजनू सिद्धांतरी के बोल थे सचिन देवर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

लोकतंत्री का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल सिद्ध कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

जनरल सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में काबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजनू साहब से बेहद मुतासर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजनू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजनू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का। फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज सानी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजनू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजनू साहब को प्रदान

गणपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एस डी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, ऊषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मधुर ने अपने बोल फिरोए।

मजरों के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को झुलाया।

को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर होने से मजबूर कहा उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर

बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गॉज से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उससे आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको भी टाइम नहीं दिया जाए और मेडिसिन लेना पड़े, डिपेंड्स। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की।

0: विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा,
0: विविध भारती से गूंजते हैं

0: Jeremy to 5:36.
1: Thank you.